पहले चुपचाप हो सुचे बैठा सुचे अगे रखियो उनको ना खिजो जा सुचा हो के जे गया लगा पण सलोक वी जाए सुटिया किस ए लगा।

आस प्यासी सेजे आवा आगे से बावा के न भावा क्या जाना क्या होए गारी माई हर दर्शन।

अपनी खलकत दी इन्नी वड्याई नहीं कीती जिन्नी वड्याई गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कीती। मैं रहां ना इत्थों तक कहता खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। किसी ने नहीं किया मेरा रूप।

हे ईश्वर साडा सुभाई है भूल जान असी कल जुगी जीव जो होए साडा सुभा है कोई सानू अखां विच पाण लई सुरमे दी सिलाई दे देवे असी उसका तो धन्यवाद कर देंदे हां पर तू सानू सुंदर नेत्र बख्शे हन कंचन वर्गा शरीर बख्शिया है चंगा रहन बहन पहनन ते होर बेअंत कृपा तू कीतियां हन असी तेरा शुकराना नहीं करदे तेरा शुकराना भूल जांदे हां इसलिए ए हमरो सुआओ ए साडा सुभा ही बन चुकिया है जे एक जन्म दा होवे सुभा तो बदल लईए कईयां जन्मां तो यही सुभा तुरिया आ रहा है इसलिए तेरी रहमत ही सानू तार सकदी है तेरी बख्शिश ही सानू तार सकदी है ए ईश्वर अगे सारिया ने मिल के अरदास करनी है हमरो सुआओ हमरो सुआओ साडा की सुभा है आद अंत जो राखन हार ध्यान देना आद अंत जो राखन हार

ने अति सिस्ती सी शरीर नु एक गल याद रखना, मां का इंजेक्शन लगा होया बच्चा रब का रूप बन सकता, ते जे मां ने चंगा इंजेक्शन नहीं लाया ते बच्चा महान पापी ते महान डाकू बनेगा। कहीं सतगुरु पातशाह साहब श्री गुरु रामदास साहब पातशाह जी ने लिख दिता।

दर्शन दृष्ट ध्यान धर, दर्शन दृष्ट ध्यान धर, गुर मूर्त होई। दर्शन दृष्ट ध्यान धर, गुर मूर्त हो।

ज्ञान होया भगत सदना जीव के हुन मास विच ना छोड़ दिता एकाग्र चित होके प्रभु भक्ति विच लग गए ते मन विच इच्छा होई के जगन्नाथपुरी जाके प्रभु दे दीदार करिए यात्रा करके आइए। आप तुर पे रस्ते विच रात पै गई मन विच सोचिया भई चलो कितों पुरुषार्थ करके प्रसाद छक लेंदे हां जां शहर विच गए एक घर जाके बेनती कीती इत्थे एक मुटियार खड़ी सी जो बेनती करके अपने अंदर ले आई महाराज आओ इत्थे ही छक लो प्रसाद ते रात हुण कित्थे जाओगे रात भी इत्थे ही गुजार लो। बड़े प्यार दे नाल भोजन तैयार कीता भगत सदना जी जदों छकन लगे तां कोल बह के पखे दी सेवा कर रही है जिवें पत्नी अपने पति दी सेवा करदी है पर अंदर इस दे जहर भरिया होया सी। इस दी उम्र छुटेरी है आदमी इसका वडेरी उम्र का सी ते रोगी सी जिस करके इसका मन बेईमान हो गया

एक बूंद जल कारने चात्रक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले फुन कामना आवे, प्राण जो थाके थिर नहीं कैसे बिरमाऊं, बूढ़ मुए नौका मिले कहो काहे चढ़ाऊं, जे डुब जावे मनुख नदी विच ते फिर बाद विच उनू बेड़ी देइए तां की फायदा है, ते जदों वेख्या ना हुण थोड़ी जी दीवार दो के इट्टां दगन गियां ते मुंह लुक जाएगा, ते हुण सारा सिमरन दा भजन दा जिहड़ा मन विच अहंकार आया सी ना वो सारा टुट गया। हे निरंकार मैं भुल गया, मैं तो गुनाहगार हां, मैं तेनू मेहने मारन लग गया, मैं नहीं किश हो नहीं किश आहे ना मोरा, अवसर लज्जा राख लियो सदना जन तोरा। जदों कहा ना मैं नहीं, क्योंकि जदों मैं आ गई ओ तो फिर हिसाब है। उच्चारण करो श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वालियां दे पास एक संत समागम होया, महापुरुषां दा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानियां दा इकट्ठ होया, ते फिर बाबा जी कहण लगे भाई सदने ने सिमरन कीता सी नाम जपया सी पर उसनू सजा क्यों मिली दसो। सारे महापुरख कहण लगे महाराज फिर इसका जवाब जे तुसी दियो तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि जानते सन भाई सारे संतां विचों श्रोमणी संत हन पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हन जो प्रतख गुरु नानक नू रोज भोग लवाया करदे सन। महाराज आप कृपा करो सदने नू क्यों सजा मिली। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहण लगे सदने नू तां सजा मिली जे आप बनया अकाल पुरख वाहिगुरु नू ईश्वर नू मेहना मारिया भाई निरपकन्या के कारने एक भयो भेखदारी कामारती स्वार्थी वांकी पैज सवारी, मैं ता तेरा सिमरन करन वाला तू ता एक कामारती दी पैज सवारी, ते जदों फिर अहंकार दूर हो गया जदों क्या के मैं नहीं किछ हों नहीं किछ आए ना मोरा, अवसर लज्जा राख दे ओ सदना जन तोरा, जदों क्या ना मैं नहीं ता उस वेले ओ दीवार दियां इत्तां उडियां हनेरी आई, ते पापी पुरुष जेड़े सजा दीवारे सन उना नू सटां लगियां मूंदी खा के वापस मुड़े, ते भगत सदना जी दी जय जयकार होई। आखरी तुकां विच भगत सदना जी कह रहे हन मैं नहीं किश हों नहीं।

चले है पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवान।

अनक जन्म बीती अन फरमाई, अनक जन्म बीती अन फरमाई, घर वास न दे दुत्र माई।

चालू नहीं होया एदे पिछे बड़ी कालना। आओ ए जानन वास्ते थोड़ा जा इतिहास नु देखिए कि किस तरह सिख राज दा ए पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शुरू किया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवें गुरु जिन्हां महापुरखां दी आत्मक अवस्था इस शिखर ते सी कि ओ धर्म अते देश दी रखिया लई अपना सरबंस वार दे

जेड़ा के वैराग दी नींद विच सुता पिया सी उसनु वैरागमय नींदर तू जगाउण आए ओ आदमी जी दा नां सी माधोदास। इस तू पहला कदी उसका नाम नारायण गिरी भी सी अते इस तू पहला उसके माता पिता उसनु लक्ष्मण देव कहंदे हुंदे सन। इस लक्ष्मण देव नारायण गिरी माधोदास बैरागी जेड़ा जंगल विच बैठा योग साधना करदा है इसनु वैरागमय नींदर तू जगाण वास्ते युग पुरुष धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नादेड़ वाल गोदावरी नदी के किनारे वाल

थोड़ा जहा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिया लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नू मार सुटिया पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नू तीर मारिया हिरनी जड़ी सी मरी। उदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के

लक्ष्मण देव ने देखी ओदे मन ते अजेहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया, पहला सन्यासी बनिया, उसका नाम नारायण गिरी पै गया, फिर बैरागी बनिया, योग सीखे।

आश्रम बना के रहन लग पया अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पया। इस गोदावरी के किनारे बहुत समा योग साधना करदया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़ियां ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधो दास दे आश्रम पहुंचे ते माधो दास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधो दास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधो दास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधो दास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इथे ना बैठो। पर गुरु साहिबां ने कहा असां जिथे

जंगल विच भजे गए माधोदास बैरागी नूं जाके कहन लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरुष आके बैठ गए लाओ लश्कर भी नाल है ओदे चेहरे अगे किसे दियां अखां नहीं हुंदियां तां माधोदास गुस्से विच आ गया कहन लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्हूं पलंग तों थले डेग देंगा और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हां पलंग नूं उल्टाण दी कोशिश कीती पर माधोदास बैरागी पलंग नूं उल्टा ना सकिया। जद माधोदास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टाण वास्ते पलंग ना उल्टा सकिया तां समझ गया कि मेरे पलंग ते जिहड़ा बैठा है वह कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधोदास बैरागी अपने आसन तो उठिया और ए देखण वास्ते आश्रम वाल तुर पिया।

अपने आश्रम विच पहुंचे है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पलंग ते बैठे हैं। चार चफेरे सिख योधे शस्त्रां नाल सजे खड़े हैं।

लम्बियां बाहवां वाले गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधोदास वाल देख के मुस्कुरा रहे सन। ते महाराज ने माधोदास फिर भी पूछता है तुसी कौन। तो गुरु महाराज ने अमृत परी मिठी

पर हुण बंदा सिंह बहादुर बना के अपना सिख बना के पंजाब वल तोरिया ते नाले उपदेश कीता, जहां तहां तुम धर्म बिथारो दुष्ट दोखियन पकर पछारो। ऐ बंदा सिंह जिथे जिथे भी धर्म दे दोखी हन उन्हां नूं जाके सजा देओ।

माता सती ने उन्हां नूं कहा शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारिआं नूं बुलाया है पर ना मैनूं बुलाया ना तुहानूं बुलाया, परंतु वो मेरे पिता दा घर है इसलिए मैं जाना चाहनी। शिवजी भगवान ने कहा बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने ता भगवान ने जान दी इजाजत दिती। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महला विच पहुंचे जिथे यज्ञ हो रहा सी, ता दशक प्रजापति ने सती नू कोई आदर ना दिता, सगा शंकर भगवान दा भी अपमान कीता। जदों इस गल दा सती ने बुरा मनाया ता दशक ने अगू सगा होर कहा, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़के पसम हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा ता उन्हां ने उसे वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरों वीरभद्र वगैरा पैदा हुए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी ता भगवान ने कहा जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर कीता। ता उसे वक्त उन्हां ने दशक प्रजापति दा सिर वड के यज्ञ दी अग्नि विच सुट दिता, हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग क्यों नसन लग पए जिउ प्रचंड महातांडव नचदी होई परलोक आ गई होवे। इसे तरह एक कथा शिव पुराण दी, शिवजी भगवान ने महाभैरों नूं

एक ऐसा शहर सी जिदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है ता सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचया